शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो किरपाल। कृपा होवेगी मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। कृपा होएगी, हो दो बार आख्या, होवेगी कृपा। पर मन जापहो राम गोपाल, वो सृष्टि नू पालन वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उन्हू मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकदा, सब आखो सतनाम। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हौ हर जब पई निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जवे, आओ मियां जी। तू सुल्तान कहा हो मियां, एक बादशाह नू क्या जाए मियां जी। ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होने तक हो रही है ना, वो इन्हीं की है कि किसी बादशाह नू मियां क्या जाए। तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कमर वड्डा। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल। जांको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहाल। हुण इसका कीर्तन एक सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय की यह रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी कि यह असी रीत कल वचन किया। सरदार प्रहलाद सिंह जी, सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना। असी इस वास्ते ये आपकी
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ।

मार्गदर्शी की स्त्रियां मर्दाना पटने शहर दिया गलियां से बाजारा फिर मार्ग की दिखती रविदार इसके कोल दान देने वाले ने बख्शिश की थी मर्दानिया ए अमर वस्तु पर बड़ी हैरानी है इसके देने वाला ही कोई नहीं

आजी बापा का वाला दिन है मेरी सास की पता करो सानू वस्तु मिल जाए फिर साडा बैठ पे आ सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सपना हो जाएगा करो अरदास जिन्हें धरती में पुटे है ओनू पानी जरूर मिले जिन्हें धरती में पुटे है ओनू पानी मिले जिन्हें खोजिए है ओनू माल जरूरत है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है ओदी अरदासा मेरा धन गुरु नानक पहले सेवक बनेगा पीछे प्यार नाथ सारे बोलो।

तीर्थ निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये समूल वस्तु दे ना मुल बंद इस वस्तु का मुल बंद अरुणा कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं मन जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरिया मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये दिखा है अरुण कहने लगे आपा की करनी है मरदानिया जा वापस दे महाराज आपू बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है ते तुसी कह दे हो वापस अदूर कहन लगे मरदानिया आपा इन किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने क्या महाराज तुसी थोड़ो चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावांगे हुण तुहानू कदे नहीं कहांगा महाराज भुख लगी अदूर कहन लगे जी मरदाने असी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले कछू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बंद ते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे एक सौ रुपये की थैली वापस दिखती सात राज अंदर होर प्यार आया नौकर बुलाया धरका कोई रबी दूर आया है कोई सौ सुन के मन धरे है प्रसादे का थाल परोस ल मिठाई भी रख लै दुध का दड़वा भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के तू चल मैं दुकान बंद करके आता हाँ उस दादे के दर्शन करना अगर कम पहुंच गए सर्वा दिन के पदार्थों का थाल रखे मथा टेकिया हजूर ने अमीर दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम दिनकार नानक नगरी अगर कह दिया झोलिया पर उठिया मस्ती बैठा चाहता है इधरों सारे भी आए हजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को तारन वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली ची है हजूर कह लगे सारसराय की चाहना है पादशाह दुनियावी दाता सारी है हीरे लाल पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश ही रहे मन नहीं रखे मन संतुष्ट नहीं है मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारसराय मन का भोजन हो रहा है मन ये नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज कर करो कृपा हजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि बाहर हजूर कहने लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं हजूर कहने लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होंगे तभी सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वह बिल्कुल सुखैल अंदर शरदा पे प्यार की रो पिया हरी परिवार ये तो मेरा बच्चा है पर जे तुसी आखो तो मैं तुहाडे कुत्तिया ने पैर च मना सकिया तो दास भक्तो जेदे नाल मेरे मन भी तो दूर हो जाए हजूर ने बख्शिश कीती सारसराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुसी भी मन करके नेड़े हो जाओ गुरु ने बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी चीज नाल तकिया ते किया सारसराय जब सतनाम कर हुकुम मस्त का हाथ रख विचो मार करिया बरियाइया सह तुथे नाम नाम दी दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी होता है।

सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोहे तो जीवा, मेरा सतगुरु जी। तो अजकाल प्राय दिया चोरियों कर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना पाए, अज खास पूर्णमासी का दिन आखो श्री भाई जी सारे सराय दिया चोरियां परियां गईं थोड़े उत्ते योगे उत्ते रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर करती जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर। तो आओ प्यारी आप अनुभव सर्वत माई पाई जो अमृत भी है।

0: जो सबसे राजू
1: आशा मरना चौथा तू करता से आज मंडा साइन जो तो पायस होई थी जो तो देश होई हम भाई कराओ सब तेरी तो समझाया जिसम कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरु मन को आया सुधाव छोड़ा मलाया तुंदर उस तुरी माय तुरी का बिठा कोई ना जी जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़ा सजोगी जिसनु तू जनाए सोई जन जाने अर्गुण सदी आप खाने जिन्हार सेवा तुझ पाया सहजे अरना समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए द्विंदु जा वरना कोई तू कर कर वेखे जाने सोई जन नान गुरु प्रगट होया समाला पहला
2: तिसरवड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह भगने चाले हम देखा तै डूबले

0: हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे हमारा अपना जान करो पित पारा हमरे दुसवे तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिए सा बैरन को वास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ को वर ना त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निभरिए उज्जो सदा हमारे पच्छा श्री स्तुज्यो करियो रक्षा राख लियो मोर रखन हारे सैब संसार प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चितर दिस्कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिवजी अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो सुखियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन तक्षण उपजायो आदंते के उतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सिखो मारी सकल प्रजा दिना सवारी सिवन को सिवन सुख दियो छत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जान जब युद्ध कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे हवारा जब आकर कर तो कबू तुम्हें मिलत दे तरसम जेते बदन से सत हारे आप अपनी बुद्ध उचारे तुम सब ही तेरे

कै सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं भय आप अपनी बुद्ध देते वर्णन भिन्न भिन्न तो देते तुम्हारा लखाना जाय पसारा कै भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग प्यो राव के गोपा अंड जे रसे तिनी पुछ खान बो राय दिनी राजा हो बैठा कौन सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्य काय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगरो दुश्चिंत उठवा थुटवाता सकल मलेश करो नान खाता जे असुविता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जम पग परे त्यार है तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकटनी आया रक्षा हो सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टम जान हरो ताके ताक तरको हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

0: भैया पाएंगे जब ते तुम्हारे तब ते गुमाम तेरे नियाने राम नीम पुराण करान अनेक है मत एक न माने
1: सिमरत शास्त्र भी सबे भेद के आम एक न जाने कृपा तुम्हारी कर मैं न क्यों सब तो बहाने सगल द्वार को छाट के पाएंगे किला जवास गोविंदा स्तुआ राम कली मल्ला तीजा आनंद एक कमका सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु ते पाया सह छेती मन वजिया वधाइया राग तन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दों तो गाओ अरी केरा मंजनी मसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मना मेरिया तू सदा रो हर नाल हर ना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदरो नाले साचे साहबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ अज सो पाए सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वस्या वाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सवत्रो पे यारो साचा नाम मेरा धारो वाजे पंशो चित कर सवागे शब्द वाजे कला चित कर तारिया पाइंदो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकरम पाया तुझे

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

0: सराचित नाव।
1: दौलत दाम दीवान मकान नादान, इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इना सब कुछ बनाया नादान। पे मेरा हुक्म हासिल होवे, मेरे को चार कोटा भी वधिया होन, ते फिर इन्हां दा गुमान करी बैठा है। वाह वाह, एक ने आके कहा धर्मराजा नूं, मेरा राज सी, वो कहन लगा गलत बात है, ये तो तेरा प्यो जदों सी भी कहिंदा सी मेरा राज है। तेरे प्यो नूं पुछिया पे किहदा राज है, वो कहिंदा मेरा। जदों ओ चल गया तो वह तो पिछली पीढ़ी देख लो, तेरे दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा पड़दादा भी यही गल कहिंदा सी, तेरा नकड़दादा भी यही कहिंदा सी। पांच छे पीढ़ियां तो तेनू गुण आ गए, नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू ये सारे कहिंदे सी मेरा, पर तू हुण जा रहा हुण किहदा है, हुण किहदा तेरा नहीं है। नादान ने सारियां बातां कहियां, दौलत दाम दीवान मकान नादान, गुमान ना करो, इहदा गुमान ना करो, असीं इहदा ही करी जांदे। राजा साहब का बचन देखो, बरसी मनाने का तां फायदा है जे असीं उन्हां दा बचन सुनीए और उन्हां दा बचन मनीए। अगली बात है जी, कहिंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना, तेरे घर वाले, तेरे पुत्र, तीआं, रिश्तेदार, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, पिछले कर्मां दे जिवें खूह दीआं टिंडां जुड़ियां पईआं ना, खाली तुरी जांदीआं, भर के आ जांदीआं, खाली तुरी जांदीआं, पानी डुल्ली जांदा, ते तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी, अंते को ना सहाई। सहाई वचन ही मारे। धन्नवाद, मैनूं डाउट सी थोड़ा जिहा, बहुत मेहरबान। ए तीआं पुत्र रिश्तेदार तेरी घर वाली और तू पूर्व जन्म के मिले हुए हो, ते अखीर वेले वे किसे ने नहीं जाना, जे जाना तो कहीं जाना, जे मात पिता सुत मीत ना भाई मन मुहाना।

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातड़ी सुहाग गणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे। तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे। तुही

रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीन न जाने। रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीन न जाने। करछी साओ न संभले भोजन रस खाने। डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने। नाप कथूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने। गुजर गोड़स वेच के खलसूड़ी आने।

खाए छुट्टड़ होई। मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई। पीड़ लई रस गन्नो छिलछू है न कोई। रंग मजिठो निकले अड लहे न सोई। वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई। काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई।

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यों चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

पलख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर समय तिस नाल न

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरु शरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे। सप्पे दुध प्याली है व्यो मुखों सुटे। सप्पे दुध प्याली है विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखी है मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे। अपन हथी

ये सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग न पाए, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

लसन लुकाया ना लुकै बैखाजे कूणे। लसन लुकाया ना लुकै बैखाजे कूणे। काला कंबल उजला क्यों होए साबूणे। डेमू खखर जोछ है दिसे मुह सोने।

पाखंड कमत्ता, दरसे वै मिर्गावले होए बै अवत्ता, करे हकूमत अगली कूड़े मदमत्ता, बोलन पाज उघाड़े आज।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होन तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

दुख पेन सफरिंग मिजरी ये कहते जहर है लाइफ की पॉइजन है दुख मोहरा मोहरा मैंने पॉइजन जितने भी साड़ी लाइफ पेन है मिजरी है दर्द है सफरिंग है वो कहते एक जहर है हूं उस जहर का इलाज की है मारण लफज वरत्या है मारण का मतलब हों मसाले पा के दवाई जो तैयार की जाए अर्ब्स वगैरह पा के जो दवाई तैयार की जाए कहते उस मारण आखते हैं अगर पेन एंड सफरिंग लाइफ के पॉइजन है तो उस पॉइजन केड़ी चीज मार सकती है बहुत ज्यादा ध्यान दो ट्राई टू बी फोकस्ड

0: फिर महाराज जी ने पूछिए, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूप बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, तलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए? महाराज जी आखते हैं साढ़े घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ऐ बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम नु त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्याउंदा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो हुंदी है जदों किसे दा नाम दिल च वस जाए, वो पूजा हुंदी है। कहिंदे हन साडे घर दे विच पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असि नाम जप रहे हैं तो समझ लो असि पूजा कर रहे हैं। अगर असि रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले

0: पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज न हो। महाराज जी आप जिदा तीर्थां दे संबंध की ख्याल है स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करन दे वास्ते दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन पिलग्रिमेज ते जांदे हन जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है इज देयर इज सच थिंग। महाराज जी आखते हैं साढ़े वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साढ़े वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही कहते हैं
1: तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है
0: तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो कि बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने दे नाल हौमी वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जिना उधरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहिंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहिंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब दी पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु दी सेवा। सो ए है नाम दी इंपॉर्टेंस। समा समाप्त, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी, कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानू खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हां दा इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु दी सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है, आप आखो बिन नावे सब चोर, सो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया? मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना। मैं तो चोरी कभी की नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दातां किसे दियां हैं? ये बना अपनियां लैंदा है कि मेरियां हैं। किसे दी चीज नूं तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो होर की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे टंग दे नाल उसनु उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा दा है, असी कहने मेरा है, माई लाइफ। When we say my life, असी इसनु फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनु बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जब असी कहने मेरी जिंदगी, किसी चीज एक किसी वस्तु किसी होर दी है, लेकिन असी लाइफ नूं भी कह दिंदे आ कि ये मेरी है, जिसका सानू पता ही कुछ नहीं कि चीज की है, उसनों असी कहने मेरी है। ये चोरी नहीं है? ए तन इंसान सोचता मेरा है, भला इंसान नूं पूछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनों बनाया सी? तैनूं तां पता भी नहीं जदों ये बन रहा सी, ये तो किसी ने तैनूं गिफ्ट दिती है। इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसे दी होर है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन नु चलान वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किस दा है? जिस दा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ये तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसे होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, तो ये चोरी हो ही जाना हुई, चोरी हो ही जाना हुई। महाराज जी ने आख्या जाके रुक बिरख तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनु असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल असी खुद बनाया है। लोहा, सोना, कोयला, रबड़ के दरख्त, दरख्त जो लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हों तो असी मार्बल लेके आने हाँ, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई, वह परमात्मा की साजी हुई है, उसनू फिर बाद च लिया के असी आखदे मेरी है। ए चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह यह कहता है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप पे क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जाता है तो असी रोना शुरू कर देने हैं कि चले क्यों गया। जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानू तकलीफ किवें हुंदी?
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਖਾਮ ਖਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹਿੰਮਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

फिर आते हम नाम बिना सुना दरबार। जिस कारबार दे विच नाम नहीं है वह सुना है, उत्थे एम्प्टीनेस, उत्थे खालीपन, उत्थे लोनलीनेस, उत्थे डिप्रेसिवनेस। जिस कर च नाम नहीं है, जिस शरीर च नाम नहीं है, वह भी अंदरों सुना है, वह भी अंदरों खाली है, वह भी अंदरों एम्प्टी है, उत्थे भी लोनलीनेस। आज का कीर्तन इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो गया। इन दी नटशेल सारा जो मैं फिर आख दिया, नानक के घर केवल ना, नानक के घर दे विच, गुरु बाबा जी दे घर दे विच तीर्थ भी नाम ही है, इलाज भी नाम ही है, अते रोशनी भी नाम ही है, पूजा भी नाम ही है, गुरु दी सेवा भी नाम ही है। अते जो नाम तो बिना है, महाराज जी आखदे ने, ओ चोर है, उसका जीवन जल जाएगा, उसका जीवन डराउणा लगेगा, अते उसका जीवन किसे काम नहीं है। एक पंक्ति में कह के कीर्तन समाप्त कर लगा हां, कहंदे विसरिया जिन नाम ते भोए भार थीए, कहंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु का नाम विसर गया है, वह धरती उत्ते सिर्फ बोझ हन जो इस धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हैं, धरती उत्ते बोझ हन और कुछ नहीं। सो इतना कुछ याद रखना, कल नूं इत्थों अगां चलांगे। पूरी चुक दिखेवां, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पंक्ति